0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Your home for community, CJMR 1320.

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

0: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
1: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
0: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देख रहा हूँ।

क्या हमारे किस्मत ने इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: हम भी दिमाग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते.
1: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.
2: इस मुबारक मौके पे बेबाक है आरज़ू, बुलंद है हौसले. आवाज मिटा दे देश परदेश के सारे फासले.

दो कुड़िया साडी गली च रहंदियां, एक पतली एक पहारी। हो पहारी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी। के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई। जद खिच के हो, जद खिच के छेड़े ने अख मारी।

माता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बह।

0: where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।